आकाशवाणी भवानीपटना समय बर्तमान प्रातः 5:57। आज मंगलवार 1948 अकाद भाद्रव मासर 31तम दिवस 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासर 22 तारीख। ईश्वरंक भक्ति प्रणति तथा अगणित श्रोताबंधुंकु हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जणाई आरंभ करुछु आजर प्रथम अधिवेशन कार्यक्रम। आम केन्द्रर प्रचारित होउछि मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलो हर्ज जोगे, एफएम्रे 100.3 मेगा हर्ज जोगे एवं न्यूजन एआईआर एप मध्यमरी आकाशवाणी भवानीपटना केन्द्रर मांगलिका।

0: ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖକର ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ହାରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ହାରିବା ହିଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାତଃ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2-दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8%

0: की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. The president will also honour the veteran actor Anant Nag and Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film. The Best Actor honor is shared by Mammootty for Brahmyugam and Karthik Aaryan for Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy earned the Best Direction for Amran, while Kalki 2898ED was named Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment. Randeep Hooda won the Best Debut Director for Swatantra Veer Savarkar. In the non-feature category, the Marathi film Bhangar was named Best Non-Feature Film, while director Anand L. Roy was selected for the Best Direction for Statue of Unity Ekta Ka Prateek. Raviraj Murmu took the Best Debut Director Non-Feature Category honor for the Santhali film Angan. With Chirag Buraniya from Ekta Nagar, Aparna Khont, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third

0: आकाशवाणी भवानीपटना श्रोताबंधु समय बर्तमान प्रातः 7:40 परवर्ती कार्यक्रम प्रचार करुचु चाषी भाई भणी सकाशे कार्यक्रम चाषर कथा उपस्थापना करिसंती जजाति केसरी नायक।
1: तो जानिछन जे धनिया गोटे एंता जिनिस जेंटा कि आमे मसला हिसाब ने ताके व्यवहार करथिसु आर कंचा थिला बेलके आमे ताके भिने भिने साग डाल ने बेले तरकारी ने स्वाद बढ़ेबा लागि ताके आमे व्यवहार करथिसु आर केते केते बेले धनिया डाल के आमे चटनी करी करी भी खाइथिसु। ई धनिया के आमे सॉस सूप एंता जिनिस मन्ति भी आमे व्यवहार करथिसु। आपण मन तो जानिछन जे आमे इ धनिया विशेष करी आमर शीत दिने बेले रवि ऋतुरे चास करा जायसी। आजकल तो आमर चाषी भाई मने सबु समयाती धनिया चास करुचन हेले भी इतार समिया होचे रवि ऋतु। जेते बेले आमे धनिया गच के लगासु सेतके बेले जदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड रु अतका आर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रु कम गरम थिबा बेले तापमात्रा थिबा बेले धनिया गचटा ठीक हिसाब से उठि नै पारे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड जदि तापमात्रा थिबा तेबे धनिया गोष्टा ठीक हिसाब रे

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से

0: सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणाखुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
4: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
1: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
2: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जाँच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
3: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाएगी।
2: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
4: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं, जो आज भी खुला घूम रहे हैं, उनको भी टावर लोकेशन से पकड़ कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
2: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व

0: उत्तराखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Sayura Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information,

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गॉव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से

0: समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया, यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी, जी।
2: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
1: जी।
2: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
2: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे उस मुहिम के, वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा।
1: जी, जी।
2: तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई, आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के जमाने में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
2: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य से। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
2: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में, एक योजनाओं में, एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओं, यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख में याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहां पर सुरेश जी, हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया?
2: बिल्कुल। देखिए, याद रखिए, आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
1: जी,
2: 2 अक्टूबर
1: जी।
2: और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवास

0: आपसी हैं, उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होके हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ये सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे एक एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहां सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक

0: वास्ते से भी संबंधित है। तो
1: जी
0: मैं
1: जी
0: समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे
1: जी,
0: एक
1: जी,
0: एक शहर का
1: जी।
0: अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहां सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है।
1: जी
0: तो मैं समझता हूं कि एक जागरूकता
1: जी
0: जनता के अंदर पैदा भी हुई है।
1: सुरेश जी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आए। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा। और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। जहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, गिव इट अप अभियान यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं? राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहां पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
2: देखिए आकलन बिल्कुल स्पष्ट है, जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि वीडियो कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना एलपीजी गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो पीएनजी के इस दौर में मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, जहां भी घर घर पीएनजी की पाइप बिछ गई है और लोग पीएनजी का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं वापस कर रहे हैं। तो एक तो गाँव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा एक दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता भी सहजता भी आई है, और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी दुआ से आजादी मिले, कि सेहत में सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है, और जिसका परिणाम ये है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
1: सुरेश जी
0: देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना जो, खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं जो कोयला जो लकड़ी का इस्तेमाल करके टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था
1: जी,
0: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक एलपीजी की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा पीएनजी के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है कनेक्शन मिल गए, जिसके बाद एलपीजी की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए।
1: जी।
0: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था।
1: जी, जी।
0: हम एडिशनल भी हमने एक ले लिया था, क्योंकि कभी पता

0: नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब से पीएनजी आया, घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटरली दे दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिवअप करना ही पड़ेगा,
1: जी जी,
0: तब जाके जो है ये होगा।
1: जी जी।
0: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था।
1: जी।
0: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिवअप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं,
1: जी, जी, जी,
0: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी जी, बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए। इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है, उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
1: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूं मन की बात कार्यक्रम का, प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में, तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे, अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया
1: जी।
0: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आम तौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन, वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है, और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य,

0: भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया। आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है?
1: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री की जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं, यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है, और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है
0: जी।
1: और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
0: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
2: देखिये, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
0: जी।
2: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
0: बिल्कुल
2: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
0: जी,
2: आज जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सीहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है, तो और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से, इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वापस आके हमारे यहाँ

0: गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी, पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था। यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति हैं उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको
1: बिल्कुल
0: मान्यता देना, उनका जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी, सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहां जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल हो

0: ते दिख रहा है।
1: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
0: एक किया पूरे भारतवर्ष,
1: पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
0: बिल्कुल
1: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और
0: सांस्कृतिक
1: एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल की प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
0: लोग जीवन में
1: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वीकार्यता, ये राष्ट्रीय एकता का और मजबूत होने का एक प्रतीक है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में ये दूरियां कम होगी, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो, ये बहुत जरूरी है, और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
0: अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, भारत विकसित हो ये हम सब की कामना, इस विकसित भारत में लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
1: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है, और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी, कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया, और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ,
0: बिल्कुल,
1: उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट

0: शुरू किया था ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है, उसका निश्चित ही कारण।
1: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: कार्यक्रमारे परवर्ती गीतटि प्रचार करुछु ओडिया कथाचित्र फूल चंदनरु। संगीत निर्देशना दी सरोज पटनायक। गीतटी को रचना करछंती मोहम्मद निजाम। गीतटी रे कंठदान करछंती अनुराधा पोडवाल। ओडिया कथाचित्र फूल चंदन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हुतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत

ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता बुनियादी ढांचे की मंजूरी जल के पुनर्प्रयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर बहुत गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सबु ब्यांक रो अलग अलग केवाईसी कागज पत्र गोटिए चाबी हे थांदा कि
1: अच्छी ना बापा सी केवाईसी आईडी
0: सी केवाईसी माने
1: बैंक आपण को केवाईसी डिटेल सी केवाईसी रजिस्ट्री रे अपलोड करी थाए आउ आपण को मिली थाए गोटे अनन्य 14 डिजिट सी केवाईसी आईडी जहां सबु आर्थिक आदान प्रदान रे वैध होई थाए गोटे जागा रे केवाईसी अपडेट द्वारा बाकी बैंक वित्तीय संस्था रे भी अपडेट होई जाए
0: वाह आरबीआई कहे
1: सुरक्षित बैंकिंग आड़ को प्रथम पदक्षेप
2: श्रोताबंधु शुणुछन्ति सुगम संगीतर कार्यक्रम आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्ररु परवर्ती कंठशिल्पी धनंजय सतपथी कंठरे नारायण प्रसाद सिंह रचनारु मन कहे तुमको मु पाखकु डाकिबी आखि कहे लाज कहे डाकना डाकना आखि कहे तुमको मु निरीखि देखिबी लाज कहे देखना देखना

0: प्यारे श्रोताओं, आपको नमस्कार और स्वागत है एक माही हिंदी पत्रिका कार्यक्रम झरोखा को। जैसे कि आपको पता है कि आप हर बार हमारे अंचल की कुछ कवि हों, प्राबंधिक हों या फिर कोई विशेष लेखक हों, उनको आमंत्रित किया जाता है और उनके साहित्य साधनाओं के बारे में, हिंदी भाषा के प्रति उनके जो लगाव है, वो कैसे, कहां से, किस वक्त शुरू हुआ और आगे क्या सपना है, ये सारी बातें होती रहती है और उनकी कविताएं सुनते हैं, उनकी छोटी छोटी रचनाएं भी यहाँ पेश की जाती है। तो आज ओडिशा आदर्श विद्यालय केशिंगा की जो हिंदी शिक्षक हैं श्री कुशलेश्वर प्रधान जी, वो निमंत्रित हुए हैं। आइए श्री प्रधान जी को स्वागत करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, स्वागत आपको।
1: नमस्ते सर।
0: हिंदी भाषा को लेके आपका जो लगाव है और कहां से शुरू हुआ, क्या वक्त था, क्या माहौल था जो आप हिंदी के प्रति थोड़ा सा झुक गए, आपकी ममता बढ़ी, आप सीखने लगे, बोलने लगे?
1: जी, मेरा लगाव तो बचपन से था मेरा लगाव
0: जी।
1: और जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी हिंदी की कुछ उपन्यास पढ़ रहे थे, प्रेमचंद जी की, खासकर गोदान पढ़ रहे थे
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं उसको देखा और मैं भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया। पिताजी उनका सार बता दिए मुझे और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आगे चलकर हिंदी के प्रति समर्पित रहूंगा, हिंदी की सेवा करूंगा।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पश्चिम उड़ीसा में हिंदी की जो बोलती है, जो चलन है, हिंदी के प्रति लोगों की जो ममता है, वो काफी हद तक हमारे जो बोलने वाले भाषा हैं, चाहे वो कोसली हो या संबलपुरी हो, उसमें थोड़ा सा मिलता जुलता बोला जाता है। तब जब आप ओडिया बोलते हैं विद्यालय में एक हिंदी शिक्षक के तौर पर, आपके जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, वो सब क्या बोलते हैं कि सर आपके मुंह से उड़िया अच्छा लगता है या हिंदी अच्छा लगता है?
1: वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं विद्यालय में उड़िया अभी तक नहीं बोला हूँ।
0: जी जी।
1: तो मैं ज्यादातर बच्चों से वार्तालाप का समय हिंदी का ही प्रयोग करता हूँ।
0: हाँ हाँ।
1: क्योंकि हमारा ये जो देश की भाषा है, जनता की भाषा है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि ये भाषा की समृद्धि हो और वो आगे बढ़ता जाएगा। कभी कभार बोल लेता हूँ तो बच्चे सुनकर हंसते हैं और कहते हैं कि आपकी उड़िया इतनी अच्छी नहीं है जितने हिंदी है।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है
1: जी।
0: तो जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे सारे समझ जाते हैं हिंदी या फिर उनका कुछ तकलीफ होता है जो आपको बाद में भी उनको समझाना पड़ता है?
1: वैसे तो मैं पढ़ाते समय बच्चों को कुछ अभिनय के माध्यम से, कुछ भाव बोधक, रस बोधक करके पढ़ाता हूँ, तो बच्चे 90% समझ जाते हैं। और जो कि हमारे मातृभाषा व्याघ्यात होता है, मातृभाषा एक होता है जो व्याघ्यात, उसके कारण कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उनको अगले कक्षा में उनको फिर से समझाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। हमको पता चला कि आप खुद कविताएं लिखते हैं, तो क्या कविताएं हैं आज आपके हाथ जो पेश करेंगे हमारे श्रोताओं के सामने?
1: जी, तो मैं कविताएं लिखता हूं और मन ही मन सुनता हूं और बच्चों को भी सुनाता हूं।
0: जी जी।
1: तो एक कविता है जिंदगी और मौत।
0: जी जी।
1: वो मैंने लिखा और मैं ये श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं।
0: जी जी।
1: कभी हमदम तो कभी मुझसे खपा लगती है, कभी अपनी

0: तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेती हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, सांस लेती हूँ जब तो जख्मों को हवा लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरा क्या लगती है।
1: जी जी जी,
0: कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, आज जो चलता है कल तस्वीर बनके दीवार पे लग जाएगा, ना मेरा ना तेरा होगा, ना तारीफ मेरा होगा, ना मजाक तेरा होगा, गुरु नाकर इस मिट्टी के शरीर पर खाक मेरा भी होगा, खाक तेरा भी होगा।
1: जी जी जी,
0: मौत दबे दबे पांव आती है, मौत दबे दबे पांव आती है, तबीयत बिगड़ बिगड़ जाती है, हमको तो घर बदलने की आदत है, मुफ्त में मौत बदनाम हुई जाती है, मुफ्त में मौत बदनाम हुई जाती है।
1: जी जी जी,
0: ये था जिंदगी और मौत के बीच।
1: जी, बहुत खूबसूरत कविता है। तो आप जब जिंदगी और मौत को देखते हुए कुछ शब्द की संयोजना करते हैं, तब आपके दिमाग में क्या चलता है कि जिंदगी क्या चीज है?
0: जिंदगी भगवान की दू ही बहुत बड़ी अनमोल चीज है, जो कि कई जन्मों के पुण्य कर्म करने के बाद ही हमें प्राप्त होता है।
1: जी,
0: और इसी जीवन में हम अगर कुछ अच्छा कार्य करें तो अमृता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी जी जी, हमारे अंदर कुछ ऐसे भावना होती है जो हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम जिंदगी जीते हैं तो जरूर, लेकिन मौत की तरह जीते हैं। तो लेखक के तौर पर आप सारे जो श्रोताओं सुन रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे कि जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए?
0: मैं उनको कहूंगा कि जिंदगी एक संघर्षपूर्ण होना चाहिए।
1: जी,
0: उतार चढ़ाव तो आता रहता है।
1: जी,
0: परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो, किसी भी जगह,
1: जी,
0: हमें जिंदगी को संघर्ष की तरह जीना चाहिए।
1: जी,
0: और हंसते मुस्कुराते जीना चाहिए।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसमें कहना चाहूंगा कि हमेशा कुछ समाज के हित के लिए कार्य करें, हमारा नाम, देश का भी नाम उसमें रोशन करें।
1: जी जी जी, बहुत धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत कविता लिखते हैं। तो ये कविता लिखने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और क्या था वो पहली कविता?
0: मैंने कविता लिखना शुरू किया मेरे ग्रेजुएशन के समय पर।
1: जी,
0: और मेरे गुरु थे डॉक्टर संजय सिंह और एक गुरु डॉक्टर गुलाम खान।
1: जी,
0: उनसे बहुत प्रेरित हूँ। और मैं जब देश की सिपाही लड़ते थे और देश की जो आन बान शान हमारी संस्कृति धरोहर है, उनसे मैं प्रेरित हुआ। और पहला कविता जो मेरी है वो वतन के नाम पर है।
1: जी जी जी,
0: जो मैं ग्रेजुएशन के समय लिखा, और वो उसको मैं कहीं प्रकाशित नहीं किया समय का अभाव से, और वो ऐसे ही मन में रहा और मेरी कॉपियों में रह गया।
1: जी जी जी, आगे क्या योजना है आपके कि ऐसे ही आप लिखते चलेंगे और कुछ पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशन करेंगे?
0: जी, मैं सोच रहा हूँ और आगे की मेरी जो रास्ता है कि हिंदी की सेवा करूँ और हिंदी को एक विश्व दरबार में उसका स्थान जो है उसको दिलाने की कोशिश करूंगा, सारे मेरे सहकर्मियों और देशवासियों की मदद से। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी की ही सेवा करूंगा और सेवा करता ही रहूंगा।
1: जी जी जी, जो आप सपना देखे हैं, रखे हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके सपने और आप जो चाह रहे हैं वो करके आगे बढ़े। और क्या कविता है सुनाइए हमें।
0: जो मेरी ये कविता है
1: जी,
0: वतन के पर।
1: जी,
0: हिंद है वतन के हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंद है वतन के हिंदुस्तान हमारा देश है, अलग धर्म अलग जाति अलग बोली के रहते हैं यहाँ, विश्व को सिखाता है मानवता जहाँ, उत्तर में जन्नत कश्मीर है, दक्षिण में शांत कन्याकुमारी, हिंद है वतन के हिंदुस्तान हमारा देश है, पूर्व में नदी ब्रह्मपुत्र है, पश्चिम में शांत सागर है, पूर्व में नदी ब्रह्मपुत्र है, पश्चिम में शांत सागर है, धोती कुर्ता पगड़ी साड़ी इसकी वसन है, धोती कुर्ता पगड़ी साड़ी इसकी वसन है, अशोक स्तंभ ताजमहल लाल किला इसकी शान है, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन कोई जाति नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन कोई जाति नहीं, ये तो भारत के सपूत हैं, दुनिया में अलग करने के कोई ताकत नहीं, विश्व गुरु हम कहलाते हैं, विश्व गुरु हम कहलाते हैं, शून्य गणित ज्यामिति संसार को हम सिखलाते हैं, अटल हिमालय जिसकी प्रहरी है, हिंद सागर जिसकी गहरी है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है।
1: वाह, बहुत अच्छा लगा ये देश प्रेम कविता सुन के। आप देश की जो व्यवस्था है, चाहे भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, सारे बातें आपने लिख दी है कविता पर। जब आप एक प्रेम की कविता लिखते हैं, एक सामाजिक कविता लिखते हैं, और जब देश प्रेमी कविता लिखते हैं, तब आपको क्या महसूस होता है, क्या फर्क महसूस होता है?

0: एक लेखक के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब सामाजिक और देश की कविता लिखता हूँ तो मेरे शरीर में एक देशभक्त यानी मैं उन क्रांतिकारियों को हमेशा मेरे अंदर महसूस करता हूँ जो कि हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान को निछावर किए थे, जैसे भगत सिंह हो, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो
0: जी।
1: मैं उसी प्रकार देखता हूँ। और जब रोमांस की जो आए, जो प्रेममय कविता जो है वो मैं कम लिखता हूँ और ज्यादातर मैं देशभक्ति पर मेरा जी, जी, जुड़ा
0: जी,
1: रहा है।
0: जी जी, जब आप कविता लिखते हैं वो समय क्या होता है? दिन में लिखते हैं या रात को लिखते हैं, एकांत में लिखते हैं या फिर आपके दोस्तों के बीच में लिखते हैं?
1: वैसे तो विद्यालय में शिक्षक के तौर पर काम कार्य व्यस्तता होने के कारण मैं रात को जब शांत समय होता है
0: जी
1: सब सो गए होते हैं तब मैं अपने कलम से कुछ पिरोता हूँ।
0: अच्छा,
1: अपने
0: जी जी जी
1: कॉपियों में।
0: अच्छा अच्छा, मान लीजिए आपको रात को बैठे हुए हैं कुछ कविता लिख रहे हैं और शब्दों की कमी हो गई, कुछ आए नहीं दिमाग में, वैसी हालत में क्या महसूस करते हैं कि ये कविता जब तक पूरी ना हो जाए तब तक मुझे नींद ना आए, मैं ना सोऊं, ऐसा कुछ सिलसिला चलता रहता है आपका दिलों दिमाग में?
1: बिल्कुल, मैं किसी काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ता
0: जी।
1: फिर मैं सोचने लगता हूँ कि कहाँ से ये शब्द लाऊं, फिर अपनी कल्पना के सागर में डूब जाता हूँ और डूबने के बाद उसी सागर से शब्द रूपी मोती को उठा लाता हूँ और अपनी कविता में उसको
0: सजाने लगते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। जैसे हिंदी को हम बोलते हैं कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, वैसे इस भाषा को आगे लेने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर मन में हिंदी की जागरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा?
1: हिंदी अपने आप में एक विस्तृत और बहुत ही बोली जाती है, बहुत ही उसका जो प्रसार है उसका बहुत बड़ा है और ज्यादातर देश की जो जनता है इसी भाषा में बोलते हैं, समझते हैं। इसका बाजार भी बहुत बड़ा है जो कि आजकल किसी भी हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी हो, हिंदी का भी बोलबाला रहा है और वैश्विक दौर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारा बाजार होता है, व्यापार होता है, उसमें भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और मेरे हिसाब से हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, उनका एक खंड है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कोसूल। अर्थात जो राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा जो हिंदी है तो इसके बिना राष्ट्र गुंगा है। तो हमें अपनी भाषा को हमेशा आगे ले जाना चाहिए, मातृभाषा में हो, जब हम सोचते हैं तो मातृभाषा में सोचते हैं। और किसी भी देश आप देखिए, जितने भी समृद्ध हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, वो अपनी मातृभाषा में ही सब कार्य करते हैं
0: जी।
1: और ठीक है हम विदेशी भाषा भी सीख रहे हैं, अंग्रेजी को सीखें, लेकिन हम अपनी मातृभाषा पर ही ध्यान दें।
0: जी जी जी, अभी अभी तो सरकार ने ये कार्यसूची भी जारी किया है कि हर दफ्तर में हिंदी भाषा में ही लिखन, पठन और कार्यान्वयन जितने सारे काम हो वो होती रहे। चलिए, हम हिंदी को लेके आगे बहुत सपना देखना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। जैसे कि आपने आपकी कविता में जिक्र कर रहे थे कि भारत अब विश्वगुरु बनने जा रहा है, तो भाषा के तौर पर पूरे विश्व में हिंदी को पहुंचाने के लिए हम सबको काफी कोशिश करना पड़ेगा, वो साहित्य के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, किसी दूसरे आलेख के माध्यम से हो। तब एक युवा होते हुए, एक शिक्षक होते हुए, आप सारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे कि हिंदी पढ़ें और हिंदी में जागरूकता बढ़ाएं, आपका क्या संदेश रहेगा?
1: मेरा तो श्रोताओं को यह संदेश रहेगा कि हमेशा अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को वो पढ़ें, लिखें और समझें। ये भाषा बहुत ही सरल है और बोधगम्य है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका हमारे लिए बहुत लाभदायक है और इसको विश्व दरबार पर पहुंचाने की कोशिश करें एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि अगर ये हमारी संस्कृति है, धरोहर है, ये अगर हमसे दूर हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा।
0: जी जी जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने कहा। चलिए चलते हैं आपकी तीसरी और आखिरी कविता की ओर। क्या है आपके पास कविता?
1: ये कविता मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें जो मेरे मन में आया कुछ मैं बोल लिख दिया।
0: जी जी जी, पेश कीजिए।
1: एक दिन कक्षा में बैठा था, मन ही मन खुश हो रहा था। बच्चों, मैंने जब तुमको देखा याद आ गया मेरी स्कूल जीवन को, वही मिड डे मील जब बजेगा खाने के बेल, उस दिन नहीं था अंडे सोयाबीन, था चावल।

0: में कंकड़ पौष्टिक विहीन, फिर भी हमारे होंठों में खुशी था
1: जी।
0: हंसते हंसते जीवन कटता था, पर आश्चर्य की बात है कि आज मैं देख रहा हूँ विद्यालयों में कम होता जा रहा है बच्चों की संख्या सोमवार मंगलवार, बढ़ता है बच्चों की संख्या जब अंडे देते हैं बुधवार शनिवार।
1: शनिवार, वाह।
0: सरकार की स्कॉलरशिप, पोशाक की नई नई योजना, बच्चे आ रहे हैं स्कूल को किताबों के बिना
1: जी।
0: सरकार की स्कॉलरशिप, पोशाक की नई नई योजना, बच्चे आ रहे हैं स्कूल को किताबों के बिना। अजीब है सरकार की नीति, परीक्षा के बिना पास होंगे बच्चे? क्या सच में देश का भविष्य बनाएंगे बच्चे?
1: जी जी जी।
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि देश की होगी प्रगति यदि इस प्रकार रहेगी सरकार की शिक्षा नीति।
1: अच्छा अच्छा, जी जी जी। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार को कोस दिया है। चलिए, अपना अपना विचार होता है, किसी विद्यालय में कौन सी व्यवस्था है वो तो हम यहाँ बैठकर नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक शिक्षक होते हुए आपने जो देखा है वही यहाँ जिक्र करने की कोशिश किए हैं शब्दों के माध्यम से। मान लीजिए आपकी विद्यालय में अगर बच्चे कभी कभार ऐसे नहीं आते हैं और जिस दिन अंडे या सोयाबीन दिया जाता है उस दिन उनका उपस्थान ज्यादा रहता है, तो बच्चों से बातें होती है आपका?
0: हाँ, मैं खुद ही परोसता हूँ जब खाने का वक्त होता है। मैं शुरू से जब विद्यालय में रहा
1: जी,
0: 4 साल हो गया, मैं खुद ही परोसता हूँ
1: जी
0: बच्चों को। अच्छा लगता है जब बच्चों की सेवा करना, और जिस कार्य स्थल में हम काम कर रहे हैं उसकी भरपूर सेवा करना, डिवोशन उसकी, उसके साथ लगाव मेरा अच्छा लगता है। और बच्चों से बात होती है कि आप में कमी क्या है, स्कूल आने में क्यों नहीं आ रहे, नहीं ये समस्या है, पारिवारिक समस्या है, ये समस्या है। सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन उसको सही ढंग से करना चाहिए, वो थोड़ी कहीं चूक हो रही है
1: जी जी।
0: लेकिन मैं उसको, सरकार की ये पहल को अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: और सरकार के ही साथ देता हूँ
1: जी जी जी। देखिए, सरकार ने ये योजना इसलिए बनाई है क्योंकि अभी जितने बच्चे ड्रॉप आउट होके रह जाते हैं, जो विद्यालय आ नहीं पाते, अपना नाम पंजीकरण कर नहीं पाते, पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, सपना देख नहीं पाते हैं, वो रोज रोज आए, पाठ पढ़ें, खुद को साक्षर बनाएं। और सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, ज्ञान तब जाएगी या पाठ तब होगा जब आपके पेट पूरे होंगे। तो इसलिए उस बच्चों के लिए खाने का भी प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही अच्छा योजना है सरकार की तरफ से। हम सबको सचेतन होकर सोचना चाहिए और सारे बच्चों जो हैं उनको विद्यालय भेजना चाहिए। आपने और कुछ बातें कही आपकी कविता में कि आज की बच्चे की जो हालात है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था क्या है? आज तो देख रहे हैं बच्चे सारे मोबाइल्स और इंटरनेट में पढ़ते हैं, लेकिन आदर्श विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा की ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, बच्चे कैसे आपको ग्रहण करते हैं?
0: बच्चे स्कूल में आकर बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक स्तर पर वो कमजोर हैं, तो ये विद्यालय पहल उड़ीसा सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो कि 2016 में शुरू हुआ, उड़ीसा आदर्श विद्यालय, इंग्लिश मीडियम, CBSE के माध्यम इंग्लिश मीडियम। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और वो CBSE के माध्यम में पढ़ना चाहता है, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा पहल है सरकार की। और हमारे स्कूल में जो आते हैं बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है
1: जी जी जी।
0: और इसमें जो हमारे जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके पास वही टैलेंट छुपा हुआ है जो कि बच्चे को, जो उनके साथ जो वार्तालाप होती है, उनके साथ जो पढ़ाई का जो शिक्षण जिस माध्यम से करवाते हैं शिक्षक, वो बहुत ही बोधगम्य और सरल रहता है। बच्चे खुशी खुशी आते हैं और खुशी पढ़ते हैं। एक दिन तो एक बच्चा कहा कि सर मुझे एक दिन नहीं है, मैं स्कूल आऊं तो मुझे कैसा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है।
1: जी जी जी।
0: उससे प्रतीत होता है कि हमारे विद्यालय में
1: जी जी
0: बहुत ही अच्छे शिक्षा,
1: गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। हाँ। जी, ये तो वृत्ति के बाद हम लोग कर लिए। वृत्ति के बाद चलिए चलते हैं ये हिंदी भाषा की ओर। आपको आखिरी सवाल यही होगा मेरी तरफ से कि जब आप हिंदी में साधना कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं और हिंदी का शिक्षक भी हैं, तो हिंदी को लेके आपका लगाव, झुकाव और आगे की सपना के बारे में आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं?
0: हिंदी भाषा तो प्राचीन काल से, उसका वैदिक काल से ही उत्पन्न हो चुका था, और हिंदी को मैं लेकर मेरी एक ही सपना है कि वो विश्व दरबार पर उसको अव्वल स्थान प्राप्त करें हिंदी, और देश की सभी जनता इसको आदर के साथ ग्रहण करें
1: जी,
0: और हिंदी की साहित्य समृद्धि हो, हिंदी की शब्दकोश आगे बढ़े, हिंदी में लेखन और हिंदी की जितने सारे गद्य विधा हो या पद्य विधा हो उसमें उसका समृद्धि हो
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: मेरा कोशिश रहेगा और लगातार ही रहा है
1: जी, जी,
0: आगे भी रहेगा
1: जी जी।

0: जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी हम मना के गए हैं कि विश्व हिंदी दिवस, और हर साल सितंबर 14 को हम मनाते हैं
1: हिंदी
0: कि
1: दिवस
0: भारतीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस।
1: शर
0: तो सिर्फ ये 2 दिन मना देने से या 2 दिन हिंदी में बात कर देने से या अपने कार्यालय में कार्यान्वयन कर देने से ये नहीं होगा। हिंदी के
1: बिल्कुल
0: प्रति हमारी ममता बढ़नी चाहिए, जागरूकता बढ़नी चाहिए, और
1: बिल्कुल
0: ये सब जागरूकता अगर बराबर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से हिंदी विश्व की भाषा बन सकती है। अभी जो सूचना मिल रही है हमें, तो उम्मीद करते हैं, और आकाशवाणी भवानी पटना की तरफ से, ये एक माह ही हिंदी पत्रिका कार्यक्रम की तरफ से आपको यही कहना चाहेंगे कि हिंदी के प्रति आपकी ममता अभी जैसे रही है, आगे और रहें, और आप जिस विद्यालय में हैं वहाँ हिंदी भाषा प्रति छात्रा और छात्राओं को रुचि भी आगे बढ़े। आज आपने अपना समय निकाला और आके हिंदी भाषा के बारे में, आपकी कविता के बारे में हमारे साथ चर्चा किया। उम्मीद करते हैं हमें जो सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं को अच्छा लगा होगा, और फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो इसी कार्यक्रम में आपसे हमारा मुलाकात होगी। सुन रहे थे ओडिशा आदर्श विद्यालय केशिंगा की हिंदी शिक्षक श्री कुशलेश्वर प्रधान जी की, हिंदी के प्रति उनका जो रिश्ता है और कविता है, दोनों बातें, कुछ व्यक्तिगत बातें भी हो गई, होता रहता है, क्योंकि आप कवि को नहीं पहचानेंगे तो कविता कैसे सुनेंगे। ये सिलसिला हर बार जारी रहेगा झरोखा कार्यक्रम में। आज के लिए श्री प्रधान जी, हम ये कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: כאן הקלטה. उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsal.

0: कौन भाई एते दिन परे?
1: हाँ भाई, अरे सुन, दाढ़ी काटिबा को केते लागिबो?
0: अरे सही अमर 60 टंका।
1: अरे भाई, एमे मात्र मो पाखरे 30 टंका कैश अछि।
0: तो देख, दुईटा उपाय अछि। प्रथम, अधा दाढ़ी काटि परिबो।
1: आउ अन्यटा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट करो, यूपीआई द्वारा।
1: एई देख भाई, यूपीआई तो बंचे देला।
0: गोटे काम करो, फेशियल भी करे नियो, डिजिटल पेमेंट करे दबो।
1: भारत करे डिजिटल देय प्रदान
2: सहज अटे, प्रतिदिन देण देण।

0: पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है।

0: सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
2: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहां पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं।
1: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के इस माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे

0: बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
3: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: इते बेला जाए कार्यक्रम शुणुथिले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी कटक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणि परिबे किछि समय परे।
5: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
6: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
5: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
6: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
5: केवल आकाशवाणी।

0: ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने ये बात आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.

0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत पहले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगे। जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बधाई दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Vice President C.P. Radhakrishnan today inaugurated the 9th Inter-International Water Week 2026 in New Delhi. Addressing on the occasion, he stressed upon the judicious use of water and highlighted that it should be conserved. He underlined that Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon processing challenges of water management. He said no single institution, sector or state can address the challenges related to water in isolation and called upon a greater cooperation and a coordinated approach.
4: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 30

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओ, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज

0: से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
1: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
0: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
1: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
0: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
1: हटिए सामने से। खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
0: जी,
1: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
0: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
1: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
0: जी,
1: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना। है ना मजेदार बात?
0: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
1: आशोताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
0: जी,
1: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
0: जी,
1: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
0: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
1: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
0: जी,
1: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
0: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूंगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या।

0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा

सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत, और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Deeksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India, brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Deeksha, Deeksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर्मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर्मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। ना तो वो सोया और ना ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
6: अरे उठो, उठो, उठो,

0: अरे उठो
1: भाई, उठो उठो,
0: अरे उठो।
2: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
0: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
3: अच्छा।
0: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, आहा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
2: दूसरे ने कहा,
4: मैं तो

0: हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
1: दूसरे ने कहा,
2: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन

0: कर जाकर भी मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो।
3: हाँ,
1: मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं
1: कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा,
4: चलो
1: सीधी तरह खीर खाओ,
3: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खाए तुम? ऐसे
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
6: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था।
1: मैं तुम्हें खाओ,
3: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खाए तुम?
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
6: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे, तुम में

0: से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: सुनुतुले एनसीईआरटी एवं सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी भवानी पटना समय ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ୱେଭ୍ରେ 240 meter ତଥା 1260 kHz ଯୋଗେ, FM ମାଧ୍ୟମରେ 100.3 MHz ଯୋଗେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜନ୍ AIR ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଆଜି ଏଥିରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରିବା ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତଟିଏ ମିତଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମ ଟକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ।

0: QR कोड स्कैन करंतु 5000 रो कैशबैक पांतु बा आज बढ़िया दिन
1: फसिला
2: UPI पिन एंट्रिंग केवल टंका पठेबा पई उद्दिष्ट
3: RBI कहे
4: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु
5: ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁବଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଆଜି ଏଥିରେ ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତଟିଏ ମିତଟିଏ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
6: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଜାଗୃତି ଶର୍ମା। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
7: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और सज्जनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
6: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
8: जब G20 हुआ था भारत में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
6: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर

0: विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर पर जीएसटी से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है। एनपीसीआई ने कहा कि एमडीआर केवल 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है। एनपीसीआई ने कहा कि 2000 रुपये तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर एमडीआर शून्य है और इसलिए जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu presented the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Gujarat today. The ceremony honored outstanding cinematic achievements for the year 2024. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories. Veteran Kannada actor Anand Nag received the prestigious Dadasaheb Phalke Award for the year 2024. Article 370 received the Best Feature Film Award, while Yami Gautam was honored with the Best Actress Award for her role in the film. Mammootty and Karthik Aaryan jointly received the Best Actor Award for Brahma Yogam and Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy received the Best Direction Award for Amaran, while Kalki 2898 AD was honored as the Best Popular Film, providing wholesome entertainment. Randeep Huda received the Best Debut Director Award for Swatantrata Veer Savarkar. We now take you live to the National Awards Ceremony, where President Murmu is addressing the gathering.

0: One, two, three, four.
1: सुनो, चार नियो। अरे, चार नियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गानी पकाउ चाजे?
0: अरे खबर कागजरो चारी पृष्ठा उल्टे लेनी, स्थानीय खबर कोट्टे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून कर प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाय स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कुनी कार्यक्रम खूब

0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: आपनक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
3: आमा सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11टा रु 11:30 मिनिट पर्यंत
2: आमा फोन नंबर हैला
4: 0667029562329568
3: मने रखंतु 0667029562329568 एवं यहाँ प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9:00 to 10:00 पर्यंत।
0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: सर्वहितधारकाणां समन्वित सहयोगः समाहूतः.
1: Water should be used precisely where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां राज्य केन्द्र शासित प्रदेशानां मादक द्रव्य विरोधी विशेष बल प्रमुखाणां तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्. एतत् द्विदिवसात्मकं सम्भाषणं भावि संततेः मादक द्रव्य दुर्व्यसनात् सुरक्षा प्रदानाय एका महती सुदृढा पीठिका भूत्वा सेविष्यते. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन संयोजिते अस्मिन् अधिवेशने 37 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः ANTF प्रमुखाः भागं गृह्णन्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य अहमदाबाद विमानपत्तनं संप्राप्य महतीं नीतिगत घोषणां अकरोत्. तेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रेरणया प्रभावितः सन्तः अग्रिमाः राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कार समारोहाः देशस्य श्रेष्ठ पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यते. अहमदाबाद विमानपत्तने वार्ताहरान् आहूय तेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः स्वपर्यटनस्थलानां प्रस्तावाः आहूताः. यस्य राज्यस्य प्रस्तावः श्रेष्ठो भविष्यति तत् राज्यम् अग्रिमपुरस्कारसमारोहस्य आतिथ्यं विधास्यति.
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं. तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे. हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा.
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य 53वें अधिवेशने प्राख्यापयत् यत् भारतस्य अग्रिम संवृद्धि गुणवत्ता प्रतिष्ठायाम् एव संभवेत्. सा सर्व उत्पादनशालाभ्यः प्रबंधन मंडलेभ्यश्च उच्च मानदंड धारणम् अन्वशाषत्. वित्तमंत्री सीतारामन समदीदृशत् यद् वैश्विक व्यापार श्रृंखलायाम् अनिश्चिततायां सत्यां 53 अधः मंदकाले अपि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% समीपम् अबाधित गत्या संवर्धते. कुआलालंपुरस्थेन भारतीय उच्चायोगेन पर्यटन वीजा पत्रेण मलेशिया देशं प्रति गच्छन्तः भारतीय नागरिकाः तत्र कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः. एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति. बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति येन अतिवासः अवैधस्थितिः शोषणं विधिसम्मत कार्याचरणं च भवन्ति. उच्च आयोगः अवदत् यत् वास्तविक पर्यटकाः वैधं सत्यापनीयं च प्रलेखम् अवश्यं वहन्तु यथा प्रत्यागमन यात्रानुपति चीटिकायाः पुष्टिः आवासारक्षणम् आगमन दिनांकस्य दिनत्रयानन्तरं मलेशियन डिजिटल आगमन पत्रस्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरणं षट्मासस्य वैधतायुत पासपोर्ट च. भारतीय वायुसेना दलेन जापान वायु आत्मरक्षा दलेन च अद्य जोधपुर वायुसेना स्थले द्वैपाक्षिक वायु अभ्यास

0: सः वीर गार्डियन विंशति षड्विंशति इति सम्पन्नः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आन्ध्रप्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टिपरं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सनो अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पञ्च क्षेप चक्रीय विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आदित्ये जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दलेन अद्य जापान देशम् आयोजिते उपांत्य पूर्वचक्रे आयोजक जापान देशम् पराभूय भारताय पदकं प्रासाधि। इति वार्ताः।
1: सुनुतिले संस्कृतरे संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी भवानी पटना प्रचार करछु लोकगीत क्रमरे केन्द्र गीत परिवेषण करछन्ते नदाब पंडा एवं साथी।

गठन करा जायछे जेंथि 50% महिला सदस्य अछन 24,08,000 नोयतका महिलांकु पानीर गुणवत्ता परीक्षा करबार लागि तालीम दिया जायछे जेंटा कि निरापद पानीय जल निश्चित करबार दिगे सेन लोकमानकु केन्द्रबिन्दु थि रखिछे इतार 2 नंबर खेपर प्रभाव बहुत गंभीर रहिछे विश्व स्वास्थ्य संगठन रो आकलन अनुसार समकल लागि पीबार पान सुविधा फी दिन 5.5 कोटि घंटा बचाई पारुछे एसबीआई रो रिसर्च अनुसार 2 कोटि महिलांकु आउ पायन आनबार के नाई पड़बार जेंथि लागि चास आर अलगा कामते महिला मानकर अंशग्रहण 7.4% बढ़ीछे जल जीवन मिशन पानीय जल के दैनन्दिन बोझनु बदली करी स्वास्थ्य सम्मान समय आ सुजोग रो गुटे भित्तिभूमि थी परिणत करुछे देशे 11 राज्य आ केन्द्र शासित अंचल गाँ इलाकार 100% परिवार के पीबार पान संजोग करी करी हर घर मान्यता हासिल करिछे आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना थी संबलपुर नो अयोध्या वाराणसी के ट्रेन यात्रार आज शुभारंभ हो संबलपुर खेतराजपुर रेल स्टेशन नु 8 जिलार मोट 775 जन तीर्थयात्री और 25 जन सहयोगी आध्यात्मिक यात्रा कर शुभारंभ कार्यक्रम थी आभासी जरिए राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी रही बेले आरडीसी संग्राम केशरी महापात्र डीआईजी चरण सिंह मीना जिलापाल और एसपी सहित रेल विभाग वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख उपस्थित थे बौद्ध जिला हरभंगा ब्लक अधीनती चलीबार भिन भिन उन्नयनमूलक काम अग्रगति बाबदे जिलापाल विभूतिभूषण नायक आज समीक्षा करिछन जामुपदर आर जाजपुर गान एक पेड़ माँ के नाम अभियान आउ भिबिजि रामजी प्रकल्प अधीनती चलीबार गछलगा कार्यक्रम जिलापाल जांच करिथिले पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर न लघुचाप ऐतका घनीभूत होकर अवपाथि बदलीछे इटा आयवा काल तक ओडिशा और उत्तर आंध्र समुद्र खणी पाखे पहुंचवार संभावना रही अवपात गोपालपुर ठानु दक्षिण पूर्व दिगे 200 किलोमीटर और पुरी नु दक्षिण दिगे 210 किलोमीटर और विशाखापट्टनम नु पूर्व दिगे 290 किलोमीटर दूर रही आयवा 12 घंटा भितर इटा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगके जाकरी पश्चिम केन्द्रीय आईताके लागिकरी उत्तर पश्चिम बंगोपसगर उपर गोटे गभीर अवपात थी बदलिवार संभावना रही अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगके गति करी आयबा काल रातिनु गुरुवार पहपह आड़े गोटे गभीर अवपात भावे विशाखापट्टनम आउ गोपालपुर भित्रे उत्तर आंध्रप्रदेश दक्षिण ओडिशा उपकूल पार करबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना मिली इतार प्रभाव थी आयबा 24 घंटा भितर रायगड़ा कोरापुट गजपति गंजाम जिला के बिजली घड़घड़ी मारिकरी जबर नु अति जबर वर्षा होपे केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाई छे इतार सहित राज्य अलग जिला मान के भी वर्षा हेबा बोली सतर्क करा जाई छे सेसे मुखिया खबर फिर गए विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पहला दिन गृहन आगत 6 बिल और 2 अध्यादेश जातीय चलचित्र पुरस्कार प्रदान कले राष्ट्रपति विशिष्ट कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग पाइले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना थी संबलपुर अयोध्या वाराणसी के गले 775 जन तीर्थयात्री और अवपात प्रभाव थी राय जबन अति जबर वर्षा नहीं करी पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सतर्क सूचना आज आंचलिक खबर इन शेष जुहार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भगवतिया, हाँ रे पुओ, आ बढ़िया, तू सेपटे जीवु मु एपटे जीवी, एपटे किए बसी थबे कि नहीं, आज किए कड़ू आईलणी ना नहीं के जानी, कहार तो देखा दर्शन गोटाए कौन शब्द हैला किए बुधे आईलो ना कौन
7: जुहारे जुहारे भाई
6: जुहारे जुहारे तुम्हें किए
7: प्रतिमा दीदी पा
6: प्रतिमा दीदी ये जो भलिया बरसा नागिची
7: हां भाई
6: हां सेथिरे भी फुन तमे आज कोड़े बाहर चलो
7: कुहनी कुहनी भाई सकाळु बरसा लागिची जे लागिची
6: मु तो देखुची
7: हेले छुआ मानन को टिके न पढेले संध्या बेले मते को भल लागे टिके पढेली एडे आसीले
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अभ्यास
7: आज्ञा
6: भलो अभ्यास माने तमे पढेले खुशी होचो ना नै छुआ माने भी मन ध्यान देकि पढुचति
7: मु भी खुशी छुआ भी खुशी
6: खुशी बढ़िया माने जानी कि हम गां कोठो घर तो छुआ बसी कि पढंती सेठी बसी जाई थबो
7: नै भाई सेठी बसी पढु जे आज हम गां कोठो घर न करी कि आज अलग गोटे घरे कली
6: माने
7: सेठी टी वर्षा पानी होउची जोठ टिके छुआ को सुविधा हबो सेमिते जगह टिके देखिकि पढ़े के असली हो
6: अच्छा बढ़िया विद्या ऑटो ही महाधन
7: बालके करो उपार्जन
6: उपार्जन पाठ पढ़ाटा तो रीतिमत चली थवा दरकार काहे कि जानि छ जो गणमा हमरो जेमापा
7: नाइ मु कोन जेमापा प्रतिमा दीदी पा
6: प्रतिमा दीदी

0: संगठन के आज के मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विनीता ठाकुर।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर हाजिर हैं खेल के मैदान की हर ताज़ा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, और वो भी कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स स्कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता,
1: और रोशनबीना देवी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स में लगातार तीसरा वुशू मेडल सुनिश्चित।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक पक्का।
1: और मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी और जादूमणि सिंह का शानदार आगाज, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: और महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया से होगा मुकाबला।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है देश को। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 147 रन से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, and make it 2-2. The defending champions, if you may. They said, no, we're attacking champions once again. A margin of 147 runs. India win by 147 runs to clinch gold here in the grand finale.
2: फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रन बनाए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 गेंद पर 48 रन बनाए। शेफाली के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दूसरे विकेट के लिए स्मृति के साथ 42 रन की साझेदारी की। कप्तान ने 19 रन बनाए। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने स्मृति के साथ पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने 45 गेंद पर 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली। ऋचा ने भी 3 छक्के और 6 चौके की मदद से नाबाद 49 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 216 रन बनाए। 217 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन की पारी खेली। काविशा दिलहारी ने 11 और कौसिनी ने 14 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छू भी नहीं सकी। दीप्ति शर्मा ने 1.5 की इकोनॉमी रेट से 1 मेडन ओवर के साथ महज 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैम्प।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि स्मृति मंधाना ने बेहतरीन प्रदर्शन का कर दिखाया है। फाइनल में उन्होंने 45 गेंद पर 79 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
3: वाह, क्या बात है। प्रशांत, एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष पहला स्वर्ण पदक जीता है और इस मुकाबले के दौरान क्या कुछ कीर्तिमान भी भारत ने बनाए?
0: बिल्कुल विनीता, टीम ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। ये रनों के लिहाज से टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
3: क्या बात।
0: इससे पहले भारत ने मलेशिया को एशिया कप 2018 में 42 रनों से हराया था। और विनीता, श्रोताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि फाइनल में मिली हार के बावजूद श्रीलंका ने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि फाइनलिस्ट थे वो भी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए वो फाइनल में थी, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला है। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
3: क्या बात है। प्रशांत, आज पुरुषों का भी मुकाबला खेला गया, तो कैसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन?
0: विनीता, अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये फ्रेंडली मुकाबला था। पुरुष को भी एशियन गेम्स खेलना है, 28 अक्टूबर से मुकाबला होना है, सितंबर से। तो लेकिन 5 ओवर का गेम हो सका विनीता, 20 ओवर का गेम होना था लेकिन बारिश के कारण 5-5 ओवर ही खेल हो सका। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 4 विकेट पर 32 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। 33 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम 30 रन ही बना सकी और 2 रन से रोमांचक मुकाबला हार गई। विनीता, मैं आपको यह भी बताऊं कि भारतीय पुरुष टीम 28 तारीख को पहला मुकाबला खेलेगी और महिला टीम की तरह ही भारतीय प्रशंसकों को पुरुष टीम से भी स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन भी है भारत का, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है, जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाज, शिवम दुबे है, तो उम्मीद की जाए कि

0: भारतीय टीम जो है वो पदक का सिलसिला ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा।
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें स्वर्ण पदक बस मिल ही जाए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी प्रसन्नता व्यक्त करती हुए एक कुछ हमारे लिए भेजा है, ये सराहना जो खिलाड़ियों के लिए की है उन्होंने, तो हम इसको सुने।
2: I am so happy that cricket has won gold and I was there in the coordination committee of organized in the Japan Asian Games coordination committee. So I only have requested them to add the cricket this time men and women. So they accepted and so I just want to see the players are winning gold medals. So I'm so happy that we have won the gold.
0: और अब चलते हैं एशियन गेम्स के वुशु गेम्स की ओर। भारत की रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रोशिबीना ने एशियन गेम्स में अपना तीसरा मेडल सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: 18 और 2022 एशियन गेम्स की मेडलिस्ट रोशिबीना ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा कॉन्टिनेंटल मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने पॉइंट्स के अंतर से मैच 5-0 से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। रोशिबीना ने इससे पहले सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। मौजूदा एशियन गेम्स में वुशु में भारत का ये पहला पक्का मेडल है। रोशिबीना एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, जब वो सांडा 60 किलोग्राम कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने 2018 जकार्ता खेलों में भी इसी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा भारत के आर्यन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जो अब मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान के साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मुनीष शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। आइए एक रिपोर्ट सुनते हैं।
4: He's done it. Ayush Shetty has done what Lakshya Sen did, what Sai Ranki Reddy and Chirag Shetty did. He's taken India to Asian Games 2026 semi-final. That's his first outing in Asian Games. And boy, he's delighted with the coaches. Pulela Gopichand is ecstatic inside for sure, and so is Ivansya, the Indonesian coach.
5: भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही प्रतियोगिता में अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। लक्ष्य सेन ने शुरुआती सिंगल्स मैच में कोडाई नारोका की कड़ी चुनौती का सामना किया। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने जीत दर्ज करते हुए भारत को सेमीफाइनल के करीब पहुंचा दिया। वहीं अंत में आयुष शेट्टी ने कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। पहला गेम 11-21 से हारने के बाद लक्ष्य को काफी संघर्ष करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-5 से जीत कर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचाया। तीसरे गेम में नारोका ने फिर से बढ़त बनाई और 5 अंकों की बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने शानदार वापसी की। उन्होंने स्कोर 19-19 से बराबर किया और फिर अगले 2 अंक जीत कर 11-21, 21-5, 21-19 से जीत हासिल की। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को पहले गेम में 21-18 से हराया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। जापान ने 3 मैच पॉइंट बचाए और स्कोर 20-20 कर दिया। सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और आखिरकार 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। वहीं अंतिम मुकाबले में आयुष शेट्टी ने वातानाबे को पहले गेम में 21-10 से हराया। आयुष ने दूसरे गेम में भी निरंतरता बनाए रखते हुए मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत फाइनल में पहुंच गया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: बैडमिंटन में भी अगर हम बात करें श्रोताओं, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। आयुष शेट्टी की बात कर लें, सिंगल्स कई सिंगल्स खिताब जीते उन्होंने, लक्ष्य सेन ने कई खिताब जीते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर 5वीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट कोई भी हो, भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों को उनसे पदक की उम्मीदें होती हैं। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय टीम को जापान से आज 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
1: क्या बात है, अब बैडमिंटन की बातें हो गई तो बातें मुक्केबाजी की हो जाए। एशियन गेम्स मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता साक्षी

0: शास्त्री ने आज शुरुआती राउंड में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता आयरा विलेगास को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट नेहा से।
1: साक्षी ने निशियो जिम्नेशियम में अपने एशियन गेम्स में डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फिलिपिनो बॉक्सर को 5-0 से हराया। उन्होंने 10-9 के स्कोर के साथ तीनों राउंड जीते। साक्षी के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। बृहस्पतिवार को उनका मुकाबला मौजूदा 51 किलोग्राम वर्ल्ड चैंपियन अलुआ बल्की बेकोवा से होगा। वहीं भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी। इसी के साथ जादूमणि ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सिल्वर मेडलिस्ट ने यह बाउट निशियो जिम्नेशियम में जीती। जादूमणि ने शानदार मुकाबला करते हुए थापा पर 5-0 से जीत हासिल की। जादूमणि ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के खिलाफ धीमी शुरुआत की, लेकिन मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और तीनों राउंड में सटीक पंच से जजों को प्रभावित किया। शुरुआती दो राउंड जीतने के बाद जादूमणि ने अपना दबदबा बनाए रखा और तीसरे राउंड में एक लेफ्ट हुक लगाया, जिसे थापा को स्टैंडिंग काउंट का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉक्सर ने तीसरा राउंड भी जीता और मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जादूमणि अब शनिवार को प्री क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के बॉक्सर कार्लो पालाम से भिड़ेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: साक्षी चौधरी हो, जादूमणि सिंह हो, इन्होंने कॉमनवेल्थ में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत को कई पदक दिलाए थे और एशियन गेम्स में भारत को इन मुक्केबाजों से पदक की उम्मीदें होंगी। और अब चलते हैं टेबल टेनिस की ओर। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो भारत की महिला टीम ने आज थाईलैंड को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने 2-1 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए थाईलैंड को 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नॉर्थ कोरिया से होगा। यशस्विनी घोड़पड़े ने 2 जीत के साथ भारत को मुकाबले में बनाए रखा, जबकि सृजा अकुला ने ओलंपियन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट सुथासिनी साइबेतकवर 3-1 से जीत हासिल करके मुकाबला पक्का कर दिया। भारत ने अब तक एशियन गेम्स टेबल टेनिस में 3 कांस्य पदक जीते हैं। ये सफलता जकार्ता 2018 में मिली थी, जहां भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स में देश के लिए पहला टेबल टेनिस मेडल जीता था। इसके बाद शरत कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स डबल्स में 1 और कांस्य पदक जीता। हांगजाऊ 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स में कांस्य पदक जीता, तो टेबल टेनिस से भी भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हमने टेबल टेनिस की बातें की तो कबड्डी कैसे पीछे रह सकता है। तो कबड्डी की बात करें तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने प्रतियोगिता के अपने दूसरे मैच में, पता है, साउथ कोरिया को 63-31 से शिकस्त दे दी है। और सुनील कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा है और साउथ कोरिया को वापसी करने का तो कोई मौका ही नहीं दिया। और प्रशांत, और क्या बोलते हो कि भारतीय जो यूनिट है पूरे मैच में कैसा
2: बेहतरीन प्रदर्शन किया है,
0: है ना?
2: बात अगर हम करें तो कोरिया के 23 पॉइंट के मुकाबले उन्होंने 38 पॉइंट हासिल कर लिया, जबकि डिफेंस ने कई सफल टैकल के साथ रेडर्स का भरपूर साथ निभाया। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम भी रही है। विनीता
0: जी, जी बिल्कुल,
2: अब तक हुए 13 टूर्नामेंट्स में से 11 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है।
0: बिल्कुल, ये गेम ही ऐसा है कबड्डी, बिल्कुल स्पीड वाला, पूरे ओर से खेला जाता है और हमारे टीम, पुरुष टीम ने 9 में से 8 बार स्वर्ण पदक जीता है और सिर्फ जकार्ता में ही नहीं, 2018 की बात करें, उन्हें वैसे तो वहां पर हार का सामना जरूर करना पड़ा था लेकिन कांस्य पदक मिला था। और महिला टीम ने तो 4 में से पता है कितनी बार स्वर्ण पदक लिया
2: जी,
0: 3 बार स्वर्ण पदक लिया। और 2018 में उन्होंने रजत पदक से ही काम चलाया। वैसे हमारी उम्मीदें तो हमेशा रहती है कि हमें स्वर्ण पदक ही मिले।
2: बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विनीता को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडु ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामीदास और मिथ्या के लिए

0: रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
4: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
5: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

0: आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
2: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मांधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: 만탄.
1: ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: भारत की प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा और उपचार पद्धति को पूरी देश दुनिया में प्रसारित करने के मकसद से हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और बीते वर्षों में सरकार की

0: बड़ी सफलता रही है कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद जिस तरह से प्रसारित हुआ है उसमें भारत सरकार ने जो पहल की है, मंत्रालय ने जो पहल की है, उस वजह से अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति को एक नई पहचान मिली है। तो आगामी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव। बहुत स्वागत है सर, और बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी को समय देने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम मनाने जा रहे हैं, किस तरह से ये विशेष है इस बार?
1: इस वर्ष हम 23 सितंबर को 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, और उसके लिए भी हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए। तो ये इस साल की हमारी थीम है, और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितंबर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं, और लगभग 150 से ज्यादा देश भी ये आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाते हैं।
0: मंत्री जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि बीते वर्षों में आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक आधार दिलाने में या साक्ष्य का आधार दिलाने में सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, कुछ इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, आयुर्वेद ने जो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहचान आयुष को, आयुर्वेदा को दिलाने के लिए आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। 2023 से इसके ऊपर काम चल रहा है, और 23 से लेके आज तक WHO के साथ में हमने 2 ग्लोबल समिट भी वहां पर किए, कि वहां पर दुनिया भर से बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। पिछले ये साल दिसंबर में जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें लगभग 127 कंट्रीज से लोगों ने उसको सहभागी हुए थे, और लगभग 27 मंत्री लेवल के डेलीगेशन भी उसमें आए थे। तो उसके माध्यम से हमने ग्लोबल पहचान साक्ष्य के आधारित देने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे आज पूरे देश में 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हमारे हैं, और अच्छे तरह से भी वहां पर फुटफॉल है, लोग वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, और आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी हमने 43,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर वहां पर हमने अभी तक प्रसारित किए हैं, और एम्स के साथ इंटीग्रेटिव रिसर्च ने आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए भी बहुत काम हमने अभी तक कर चुके हैं।
0: निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का जो एक दृष्टिकोण है वन नेशन वन हेल्थ, इसके तहत देखा गया है कि जो गांव में स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे लेकर बड़े अस्पतालों तक अब आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसको पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। तो किस तरह से ये पूरे देश भर में स्वास्थ्य लाभ की एक बड़ी पद्धति के रूप में ये उभरी है और लोगों को इसका लाभ मिला है?
1: ये देखिए, हमारा जो एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के माध्यम से देते हैं। तो आज प्राथमिक स्तर पर जो है रूरल एरिया में हमारे, मैंने 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां पर आयुर्वेदिक और आयुष के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे, करोड़ों लोगों को सस्ता और सुलभ उपचार वहां पर मिल रहा है, और आयुष को मुख्य धारा स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ने के लिए रोकथाम और उपचार दोनों वहां पर सशक्त हुए हैं। आयुष उपचार को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने पर भी हमारा विचार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो है ही, उसके साथ सभी लगभग PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतना ही नहीं एम्स तक सभी जगहों पर आयुष के विभाग खोले गए हैं, और वहां पर हमारे आयुष के डॉक्टर बैठकर आयुष के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं।
0: अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं या पद्धति है उसको लेकर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय मानक या गुणवत्ता को लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, तो इसको लेकर दुनिया भर में दूसरी पद्धतियों के मुकाबले आयुर्वेद के प्रति कैसे भरोसा बढ़ा है, इस पर कुछ आप कहेंगे?
1: अभी तक हमारे आयुष मंत्रालय ने फार्माकोपिया मानक और आयुष वर्टिकल पर 50 से अधिक लैब टेस्टिंग को अनिवार्य हमने किया है। आयुष मार्ग को भी हम बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे आज 150 से अधिक देशों में भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों पर दुनिया का भरोसा कई गुना बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग 9 से 10 गुना तक इस 12 साल में बढ़ चुका है।
0: भारत ने अपने जो पारंपरिक ज्ञान और रिसर्च को लेकर जो नए कदम उठाए हैं तो उसको

0: कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, शोध के आधार पर, रिसर्च को लेकर?
1: अभी देखो, रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पारंपरिक बयान है और रिसर्च सुरक्षा से हमने युवा शोधकर्ताओं को भी उससे जोड़ने का काम किया है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से 4 लाख से अधिक फार्मूले को पेटेंट होने से हमने उनको अभी तक बचाया है। ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें आयुर्वेद स्टार्टअप्स के लिए भी हमने 1,000 करोड़ तक इंक्यूबेशन फंड शुरू किया है। आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी पारंपरिक ज्ञान के शोधों को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है और इससे हमारे युवाओं में शोध, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी एक नया जोश आया है।
0: सरकार की, मंत्रालय की हेल इन इंडिया पहल या जो मेडिकल टूरिज्म की पहल है, इसमें आयुर्वेद को किस तरह से प्राथमिकता मिल रही है? कैसे भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है इस फील्ड में?
1: ये देखिए, भारत का जो मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू ट्रैवल, आयुष वीजा और निर्यात प्रोत्साहन परिषद के जरिए हम आयुर्वेद उत्पादकों को ग्लोबल ब्रांड उनको हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक आयुष के बाजार को $23 बिलियन से बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य भी हमने रखा है।
0: हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब जो चिकित्सा की पढ़ाई है उसमें जो एक आयोग का भी गठन किया गया है और उससे कैसे अब जो युवा हैं वो आयुर्वेद को एक करियर के तौर पर अपना रहे हैं और कैसे इससे आगे आने वाले समय में एक बड़ी संभावनाएं खुलेंगी जो आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में सामने आएंगे।
1: यानी कि हमारे मंत्रालय के अंदर ही हमने NCISM का गठन वहां पर किया है। अभी हम लगभग 750 आयुर्वेद कॉलेज में पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारोन्मुख उसमें बनाया गया है। नीट के माध्यम से पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित हुआ है। इससे युवाओं के लिए शिक्षण, अनुसंधान, वेलनेस टूरिज्म और वैश्विक प्रैक्टिस में हजारों नए करियर के द्वार खोले गए।
0: प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी जैसे कि विजन है कि घर घर तक जो पारंपरिक आहार है वो पहुंचे, तो उसमें आयुष मंत्रालय या हमारा आयुर्वेद किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है जिससे कि हमारी स्वस्थ जीवन शैली में जो पारंपरिक आहार है उसकी गुणवत्ता है वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो?
1: अभी जो हम देखते हैं कि जो अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो गैर संचारी रोग या बीमारियां जो बढ़ रही है उसका मेन कारण जो है कि खान पान और हमारे लोगों की दिनचर्या, तो उसके लिए भी हमारा आयुष मंत्रालय काम कर रहा है कि आयुष आहार को हमने प्रमोट किया है कि अच्छा आहार लेने से और दिनचर्या अच्छे रखने से बहुत सारी जो BP, शुगर, मानसिक तनाव ये जैसी बीमारी के ऊपर हम नियंत्रित कर सकते हैं और लोगों का और युवा पीढ़ियों का भी स्वास्थ्य हम उसके माध्यम से अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं।
0: हम आज डिजिटल दौर में जी रहे हैं और मेडिकल फील्ड में खासतौर पर डिजिटल सेवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में आयुष की डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है?
1: हमारे आयुष मंत्रालय ने अभी तक आयुष ग्रिड, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज तक 5 करोड़ से अधिक नागरिक को घर बैठे हमने उनको परामर्श दिया है। डिजिटल तकनीक जैसे AI की मदद ने आयुर्वेद को लोकल गांव से ग्लोबल तक बढ़ावा देने का काम भी हमारा मंत्रालय कर रहा है।
0: बिल्कुल, उसमें आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसे हमारी स्वस्थ जीवन शैली में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है आयुर्वेद इसमें, और कैसे भारत का जो एक निर्माण चल रहा है उसमें आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है?
1: ये देखो, आने वाला जो समय है वो सही मायने में उपचार का नहीं है, वो रोकथाम का समय है।
0: जी बिल्कुल,
1: दुनिया इलनेस से वेलनेस की ओर मुड़ रही है और आयुर्वेदिक जीवन शैली रोगों जैसे मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसे बचाव का सबसे सशक्त समाधान आयुष में है। स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या से ही होकर जाता है। पूरी दुनिया भारत के ज्ञान को स्वीकार कर रही है और यही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमारे उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।
0: मंत्री जी, बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के साथ आपने अपना समय निकाला और इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आपने विशेष बातचीत हमारे साथ की,
1: धन्यवाद।
2: भारत के स्वास्थ्य ढांचे में आयुर्वेद पद्धति के महत्व और विश्व स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही नई पहचान पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट।
3: भारत की 5000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज देश की मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न और सशक्त अंग बन चुकी है। वर्तमान में सरकार एक व्यापक रणनीति

0: के अंतर्गत इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का कायाकल्प कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए 6400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में 12,200 से अधिक आयुष आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा चुकी है, जहां लोगों को निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही लगभग 13,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय ई संजीवनी टेलीमेडिसिन मंच के माध्यम से अब तक 50 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जहां आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के अनुसार अब आयुष उपचारों को बीमा कवर में शामिल किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता कर कैशलेस इलाज की राह आसान की है। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए देश भर में आयुष कॉलेजों, स्नातकोत्तर सीटों और शोध पहलों का विस्तार किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान और आयुष स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के माध्यम से जड़ी बूटियों की सुरक्षा और प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। शोध को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अनुवादिनी AI प्लेटफॉर्म की मदद से अनुसंधान पत्रों को 13 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है। गुजरात के जामनगर में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर और विभिन्न देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति दिला रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत ने भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन और नए संस्थानों की घोषणा से ये स्पष्ट है कि आयुर्वेद परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम से स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में हमारा देश निरंतर अग्रसर है।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: 2026 आईटी नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष

0: शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंका की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
1: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
0: हॉकी की भी यही कहानी है। वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
1: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
0: अब चलते हैं बॉक्स

0: सिंह रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपॉन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
0: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan, yet This victory

0: was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favour of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
0: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: TT और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
0: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वाज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कंप्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, थेरेबाय कंप्लीटली आउटप्लेइंग हिज अपोनेंट।
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: Aryan Nehra was in action for India in the swimming competition in the men's 1500 meter freestyle final B. Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danu Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was

0: really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and eighth in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में दो सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
0: The Indian shooting pair of Ella Vinil Valarivan and Parth Mane finished fourth in the 10-meter air rifle mixed team final at the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज।

हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

अपार गीत रचना अंजन, संगीत संचना कल्याणजी आनंदजी। ए गीतटी अनुरोध करिछंती लीजा अद्विक, साई सौम्य, लिप्सराणी बारिक, बिकी एवं मामली। गीतटी शुणु लावारिस कथाचित्र।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କମରେ ସନ୍ତୁର ବାଦନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା। ଏଥିରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ରାଗ କଳାପତି। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା, ସମୟ ରାତି 11 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण

0: प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited state